चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

0: Taken from the soundtrack of Ded Bigha Zameen. Stevin Ben, aaj jaane ki zid na karo. Thank you to all those who've dropped red hearts for this song. Or let me know with just two words, as Santoshi in Harrow often does. Nice song. That's all she says. And I know just how much she loves it. Thank you. Pooja in Harrow, Preeti in Crowley, Meena Davlings, thank you. 07925-700-272 is the studio WhatsApp number. आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो पर शबनम साही को ऑन अ मंडे मॉर्निंग द 17th ऑफ अगस्त की सुबह. गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी.
2: अगर आप उसे लड़खड़ाने भी नहीं देंगे तो वो अपने आप को संभालना कैसे सीखेगी.
3: वो बाहर की नुकीली दुनिया के लिए नहीं तैयार है.
4: शायद समझ नहीं आएगी पर याद रह जाएगी.
0: फॉलो जूही इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ जस्टिस करेज एंड ड्रीम्स इन जूही मुई एवरी मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी. The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Varsha just WhatsApped in to say thank you. Beautiful rendition of the original. It was, wasn't it? Ye bataiye, duniya mein SS initials wale log kam the kya? Ki now we have Subodh Sharma on the vocals from Avarapan 2, Vejunoon. It is a bit of a slow burn. It picks up pace as the song unfolds. Good morning. So-

0: There you go, your winning song this hour from the movie Tere Mere Sapne. All right, let's get another listen to your trio then, shall we?
1: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.
1: The Gold Rate with Sunrise Radio on 963 and 972 AM in London. Nationwide on DAB. Worldwide via sunriseradio.com on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers and for the Radio Player and Nation Player app. Stay connected to your favorite Sunrise Radio 24 hours a day, 7 days a week.
0: Gold is trading at £104 per gram. Okay, here we go. Today's trio sounds like this, taken from a movie that released in the year 2000. Got so many of you still saying Sharad Kapoor. He's not in the trio, guys.
3: बोल क्या बोलने का है तेरे को?
4: एक खास बात है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ.
3: मेरे को तेरा कोई मदद का जरूरत नहीं है. Oops, sorry, mistake.
4: ठीक है, मुझे भी ये सब करने का कोई शौक नहीं है.
5: तुम इधर नया है?
4: हाँ, मैं सोच रहा था कि अगर कोई मुझे टाउन दिखाएगा तो बहुत मजा आएगा.
5: उसको तुम जरूर मिलना, वो तुमको सब बताएगा. रात में उजाला, दिन में तारे.
6: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.

0: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: Time is 19 minutes after 5. Good afternoon.
2: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.